новостей Парижа не вало, обкасвагать я Марисанс критик бахами, а в ям не так, как и апко, мир за турсон зодаки, дживенники бареми, батаинги я Марисатрей. Мирза Турсун Зода бисвиша тавдике таджи сайтя урсанскритике прамук вяктион миси эки. Онка джанам до маи унисо гярако хисар зилеке каратуган михуата. Баш пансеи унхен гян урсайтя ме гехери ручити. Ор бад ме унхоне апни самайки шикшани санстхаон ме адяйн джари ракха. Джи самаджи кураджнитик ватаваран ме ве баре хуе усне унке даштиконке нирман пар гехра прабахавда. Онки рачнатма гативидхи они соутиске дашак се шуру хуи. Прараме онхоне деш бхакти ор самаджи вишайон пар кавитаен ликхи. Самайке саат онки рачнаен адхик самрит хоти гаи. Ор онме шанти раштронке бич митрата саманта ор манавта джейси метвапуран вишай шамил хо гаи. Ве он пехле вяктиоме сетхе джинхоне таджик сайтяме антараши мудонко наи дештикон се прасту. Саити Карионке Садса Турсунзода Ек Самаджи Кураджнитик Вяктик Бихити. Ононе Вибина Падон Паркаря Картехуе Таджи Санскрити Орсайтяки Викасме Метвапуран Йогдандя. Века и Варшонтак Тачкистанке Лекак Сангхке Адияшрахи Орашри Сайтяки Викаске Лие Барай Йогдандя. Иске Алава Ононе Антарашри Старпар Бихи Тачкистанка Пратинитхит Кя Ор Вибина Самиланон Орбит Хаконми Бахагля. Онки рачнаен атьян вивидхатапурн хе. Онки кавитаен, кавья рачнаен, орелек, патхон ке бич бахут локпри хе. Онки прасит кавитаен, критиян джейсе Хасанья Рубакаш ор Садуи Осио. Самаджи кор манви вишайонко сарал ор прабавшари башами прастут карти хе. Ви хамеша апни рачнаонке матиямсе логонке дилломе прем шанти ор апаси самаджки бахавна джаганека прем. Раяс картити. Мирза Турсунзода на кевале кавике руп ме балки ек санскрити ор самаджи вяктив ке руп ме бхи джане джати хе. Унке махан йогдан ке лие унхен каи саркари пураскарон се саманит кия гая. Аж бхи унка нам баре саман ке саат лия джата хе. Ор унки сахитик вирасат таджик санскрити ка ек махатвапуран хисса мани джати хе. Унке нидхан 1977 ме хуа, леке उनकी रचनाएं और उनका नाम आज भी जीवित है. मिर्जा तुरसुनजोदा की रचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और शिक्षा का स्रोत बनी हुई है. Мирза Турсунзода таджи сайтяки махан кавион месе эки, джинки рачнаон ме манавта шантио раштрон ке бич митратаке уча адаршонка вяпак читеран милтахи. Онке рачнатма карионка икматвапуран бахак бахарат ке дживан, санскрити ологонке сангаршонко самарпите, ис дешке онке ятрае не онхен гигри прернади, джиске пари намасваруп онхоне каи прабавшали ор артхапурн рачнае. Ин рачнаун ме Хасанья Рубакаш, матлаб гари кинчневала Хасан вишеш тхан ракти хе. Е крити ек садхаран мехнаткаш вякти Хасан ке дживан пар адхари те. Джо катхин париститион ме гари кинчкар апна дживан япан карта хе. Во самаж ке гариб вар ка пратинитхи хе, лекин апни имандари ор манав гарима ко банае ракта хе. Лекхак не Хасан ке мадиам се пури самаж ке समाजी स्थिति को दर्शाया है और पाठकों को इस तरह के लोगों के जीवन के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया है. ये रचना सामाजिक असमानता और अन्याय की आलोचना भी करता है. एक अन्य महत्वपूर्ण कृति सदोयोसियो है जिसमें कवि एशिया के लोगों की एकता और सहयोग पर जोर देते हैं. इसमें भारत को स्वतंत्रता और आत्मा निर्भरता के लिए संघर्ष करने वाले देश के रूप में प्रस्तुत किया गया है. लेखक ये संदेश देते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के बावजूद लोग शांति और प्रगति के लिए एकजुट हो सकते हैं. इसके अतिरिक्त किस्सा हिंदुस्तान भी एक महत्वपूर्ण
रंग रचना है जिसमें लेखक ने भारत की अपनी यात्रा के अनुभवों को साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया है। इसमें उन्होंने शहरों के हालचाल, गांवों की शांति, प्रकृति की सुंदरता और लोगों के जीवन को जीवंत रूप में चित्रित किया है। साथ ही उन्होंने सामाजिक समस्याओं को भी उजागर किया है और लोगों की आशा और संघर्ष की भावना को दर्शाया है। ये कृति केवल यात्रा वृत्तांत नहीं है बल्कि गहन मानवीय और दार्शनिक विचारों को भी प्रस्तुत करती है। इसके अलावा कवि ने भारत के विषय में कई कविताएं भी लिखी है जिनमें देश की प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं का सुंदर वर्णन मिलता है। इन रचनाओं में लेखक का भारत के प्रति प्रेम और सम्मान स्पष्ट दिखाई देता है। साथ ही उनके निबंधों और लेखों में भी भारत के जीवन और समाज का यथार्थ चित्रण मिलता है। उन्होंने अपने अनुभवों और अवलोकनों के माध्यम से पाठकों को उस समय के भारत से परिचित कराया है। मिर्ज़ा तुर्सुनज़ोदा की रचनाओं में भारत केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उनके कृतियाँ शांति, मित्रता, समानता और मानवता का संदेश देती है और समाज और आज भी पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। मिर्ज़ा तुर्सुनज़ोदा ने अनेक अत्यंत अर्थपूर्ण कविताओं की रचना की है। उनकी कविताएँ सरल, प्रवाहपूर्ण और प्रभावशाली में लिखी गई है। उनमें मातृभूमि के प्रति प्रेम, शांति, राष्ट्रों के बीच मित्रता और मानव समाज जैसे विषय मुख्य रूप से शामिल है। कवि अपनी कविताओं में अक्सर प्रकृति का भी सुंदर वर्णन करते हैं और उसे गहरी भावनाओं एवं आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। उनके काव्य छवियां जीवंत और स्मरणीय होती है जो पाठक के मन में आसानी से अंकित हो जाती है। उनके अनेक कविताओं में शांति का विचार और युद्ध के विरुद्ध संघर्ष स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। उन्हें एक शांति प्रिय कवि के रूप में माना जाता है जिन्होंने अपने साहित्यिक शब्दों के माध्यम से लोगों को शांतिपूर्ण जीवन और आपसी मित्रता की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया। उनकी कविताएं केवल साहित्यिक सौंदर्य ही नहीं रखती बल्कि उनमें गहन शैक्षिक और नैतिक संदेश भी निहित है। सामान्यतः मिर्ज़ा तुर्सुनज़ोदा की रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक और आध्यात्मिक मूल्य रखती है। उनकी लंबी कविताएं और अन्य काव्य रचनाएं मिलकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जिसमें मानवता, शांति और मित्रता को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। उनकी साहित्यिक विरासत आज भी पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करती है।

0: विश्व तंबाकू निषेधाध्यादेश यही हमारे इस घंटे के विषय। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये वाकया सिगरेट के पैकेट पर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। सिगरेट मुंह से लेकर पेट, जिगर, गले जैसे कई तरह के कैंसर का कारण बन सकती है। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेधाध्यादेश मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के विषय में सचेत करना है, साथ ही इसके नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना है, जो वर्तमान में दुनिया भर में हर साल 70 लाख से अधिक मौतों का कारण बनता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेधाध्यादेश की शुरुआत की थी। कई लोग सोचते हैं कि जो लोग धूम्रपान करते उन्हीं को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन आप ये बात नहीं जानते हैं कि उनके साथ बैठने से हर साल लाखों लोगों की मौत धुएं के कारण होती है। इतना ही नहीं, वातावरण में सिगरेट के अवशेषों में 225 से ज्यादा घातक रसायन स्मोकिंग करने के कई घंटों तक रहते हैं। जब आप सिगरेट जलाते हैं तो माचिस या लाइटर और सिगरेट दोनों का धुआं मिलकर नाक के बाहरी परत को डैमेज कर देता है। सिगरेट के हीट से मुंह, चेहरे और नाक के स्किन पर असर पड़ता है, होंठ काले होते हैं और जोड़ियां पड़ने लगती है। जब सिगरेट का धुआं मुंह में जाता है तो वो दांतों के एनामल पर जमा होकर उन्हें पीला करने लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 70 लाख लोग तंबाकू के वजह से मौत के शिकार बनते हैं। इनमें से करीब 20 लाख लोग दिल की बीमारियों से मरते हैं। रिसर्चरों ने तुलना कर देखा है कि एक दिन में एक पैकेट सिगरेट पीने वालों की तुलना में हर दिन एक सिगरेट पीने वाले पुरुषों में भी दिल की बीमारियों का जोखिम 48% था। अभी इसके कारणों का पता तो नहीं, लेकिन महिलाओं में ये थोड़ा कम यानी करीब 31% था। हेंगशा ने कहा, इसके पीछे जैविक अंतर या फिर जीवन शैली में फर्क हो सकता है। तश्किसा में अविसेना नामक ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक भारतीय स्नातक श्री सरवार खान के कहना है कि धूम्रपान हमारे शरीर में और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, और उसकी राय इसके बारे में ऐसे है।
1: सिगरेट पीना सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए हानिकारक है। धूम्रपान चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो सिगरेट की शक्ल में हो, हुक्के की शक्ल में हो, बीड़ी की शक्ल में हो या सिगार की शक्ल में हो, धूम्रपान वो बहुत ही नुकसानदेह है। धूम्रपान से सबसे ज्यादा नुकसान इंसान को फेफड़े में होता है। सांस लेने की तकलीफ होती है, फेफड़ों की नसें जो है, नालियां जो होती हैं फेफड़ों की, वो तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। फेफड़े का कैंसर बहुत देखा गया है। जो सिगरेट नोशी करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनमें देखा गया है कि फेफड़े का कैंसर बहुत होता है। गले का कैंसर हो सकता है सिगरेट पीने वालों को, मुंह का कैंसर हो सकता है सिगरेट पीने वालों को, इसलिए सिगरेट से दूर ही रहना चाहिए। सिगरेट में होता है निकोटीन, निकोटीन जो हमारे सेहत के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। सिगरेट किसी भी शक्ल में हो वो बहुत ही नुकसानदेह है, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, मर्द हो, औरत हो, किसी को भी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट से दूर रहना चाहिए। खास तौर से महिलाओं में, महिलाएं, वो महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो उनके घर में पल रहा बच्चा होता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए घर में पले बच्चे के ख्याल के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान से खुद भी नुकसान होता है और पैदा होने वाले बच्चों के ऊपर भी असर पड़ता है, इसलिए धूम्रपान से दूर ही रहना चाहिए। धूम्रपान कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आज हम जगह जगह पर देखते हैं इश्तिहार लगा होता है कि धूम्रपान निषेध, बसों में, ट्रेनों में और भी जगह पर, खाने पीने की जगह, बैठने की जगह जहाँ पर लोग बैठते हैं या पार्क में लिखा रहता है धूम्रपान निषेध, क्योंकि धूम्रपान जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है हमारे सेहत के लिए, हमारे सेहत के से खिलवाड़ होता है ये। इसीलिए धूम्रपान से दूर रह करके, सिगरेट से दूर रह करके हम अपनी सेहत का ख्याल कर सकते हैं। हम अगर सिगरेट से दूर रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं, जिसमें खास तौर से फेफड़े की होने वाली बीमारियां हैं। इसलिए सिगरेट से दूर रहें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।

0: विश्व तंबाकू निषेधाध्यादेश यही हमारे इस घंटे के विषय। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये वाकया सिगरेट के पैकेट पर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है। सिगरेट मुंह से लेकर पेट, जिगर, गले जैसे कई तरह के कैंसर का कारण बन सकती है। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेधाध्यादेश मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को तंबाकू से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान के विषय में सचेत करना है, साथ ही इसके नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना है, जो वर्तमान में दुनिया भर में हर साल 70 लाख से अधिक मौतों का कारण बनता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राज्यों ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेधाध्यादेश की शुरुआत की थी। कई लोग सोचते हैं कि जो लोग धूम्रपान करते उन्हीं को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है, लेकिन आप ये बात नहीं जानते हैं कि उनके साथ बैठने से हर साल लाखों लोगों की मौत धुएं के कारण होती है। इतना ही नहीं, वातावरण में सिगरेट के अवशेषों में 225 से ज्यादा घातक रसायन स्मोकिंग करने के कई घंटों तक रहते हैं। जब आप सिगरेट जलाते हैं तो माचिस या लाइटर और सिगरेट दोनों का धुआं मिलकर नाक की बाहरी परत को डैमेज कर देता है। सिगरेट के हीट से मुंह, चेहरे और नाक के स्किन पर असर पड़ता है, होंठ काले होते हैं और जोड़ियां पड़ने लगती है। जब सिगरेट का धुआं मुंह में जाता है तो वो दांतों के एनामल पर जमा होकर उन्हें पीला करने लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 70 लाख लोग तंबाकू के वजह से मौत के शिकार बनते हैं। इनमें से करीब 20 लाख लोग दिल की बीमारियों से मरते हैं। रिसर्चरों ने तुलना कर देखा है कि एक दिन में एक पैकेट सिगरेट पीने वालों की तुलना में हर दिन एक सिगरेट पीने वाले पुरुषों में भी दिल की बीमारियों का जोखिम 48% था। अभी इसके कारणों का पता तो नहीं, लेकिन महिलाओं में ये थोड़ा कम यानी करीब 31% था। हेंगशा ने कहा, इसके पीछे जैविक अंतर या फिर जीवन शैली में फर्क हो सकता है। तजकिस्तान में अविसेना नामक ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक भारतीय स्नातक श्री सरवार खान के कहना है कि धूम्रपान हमारे शरीर में और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, और उसकी राय इसके बारे में ऐसे है।
1: सिगरेट पीना सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए हानिकारक है। धूम्रपान चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो सिगरेट की शक्ल में हो, हुक्के की शक्ल में हो, बीड़ी की शक्ल में हो या सिगार की शक्ल में हो, धूम्रपान वो बहुत ही नुकसानदेह है। धूम्रपान से सबसे ज़्यादा नुकसान इंसान को फेफड़े में होता है, सांस लेने की तकलीफ होती है, फेफड़ों की नसें जो है, नालियाँ जो होती हैं फेफड़ों की, वो तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। फेफड़े का कैंसर बहुत देखा गया है, जो सिगरेट नोशी करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनमें देखा गया है कि फेफड़े का कैंसर बहुत होता है। गले का कैंसर हो सकता है सिगरेट पीने वालों को, मुंह का कैंसर हो सकता है सिगरेट पीने वालों को, इसलिए सिगरेट से दूर ही रहना चाहिए। सिगरेट में होता है निकोटीन, निकोटीन जो हमारे सेहत के लिए, हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। सिगरेट किसी भी शक्ल में हो वो बहुत ही नुकसानदेह है, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, मर्द हो, औरत हो, किसी को भी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट से दूर रहना चाहिए। खास तौर से महिलाओं में, महिलाएं, वो महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो उनके घर में पल रहा बच्चा होता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए घर में पले बच्चे के ख्याल के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए धूम्रपान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान से खुद भी नुकसान होता है और पैदा होने वाले बच्चों के ऊपर भी असर पड़ता है, इसलिए धूम्रपान से दूर ही रहना चाहिए। धूम्रपान कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आज हम जगह जगह पर देखते हैं इश्तिहार लगा होता है कि धूम्रपान निषेध, बसों में, ट्रेनों में और भी जगह पर, खाने पीने की जगह, बैठने की जगह जहाँ पर लोग बैठते हैं या पार्क में लिखा रहता है धूम्रपान निषेध, क्योंकि धूम्रपान जो है وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے ہماری صحت کے لیے، ہمارے صحت کے سے کھلواڑ ہوتا ہے یہ۔ اسی لیے دھومر پان سے دور رہ کر کے، سگریٹ سے دور رہ کر کے ہم اپنی صحت کا خیال کر سکتے ہیں۔ ہم اگر سگریٹ سے دور رہتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے دور رہتے ہیں، جس میں خاص طور سے پھیپھڑوں کی ہونے والی بیماریاں ہیں۔ اس لیے سگریٹ سے دور رہیں، سوستھ رہیں اور تندرست رہیں۔